0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी नो आप बोझ केंद्र है। પ્રસ્તુત છે વિચાર બિંદુ, વિષય છે જીવન યાત્રા, પઠન છે નિમિષા શાહનું.
3: વિચાર બિંદુ,
4: જીવનની યાત્રા અનોખી છે, તે અવિરત વહ્યા કરે છે. જે જીવનની યાત્રાને સમય સાથે તાલ મિલાવીને ભોગવે છે ને, તેની યાત્રા સફળ કહેવાય. જેમ કેલેન્ડરમાંથી ફાટેલું પત્તું નકામું હોય તે પાનાનો સમય પાછો આવતો નથી, તેમ ગયેલો સમય પાછો આવતો નથી. ઈશ્વરે જે 25-50 વર્ષનું આયુષ્ય આપ્યો છે તેને પરમાર્થમાં માણી આ દુનિયામાં કંઈક યાદગીરી મૂકવા જેવી છે. મનુષ્યો આ પૃથ્વી પર આવે છે અને જાય છે, પણ જે કાળના પ્રવાહમાં આ પૃથ્વી ઉપર કંઈક પરમાર્થના કાર્યોની છાપ મૂકતા જાય છે તેને સૌ યાદ કરે છે. અને એટલે જ જીવન યાત્રા પરમાર્થના કાર્યો થકી દીપાવીએ.
3: વિચાર બિંદુ,
2: વિચાર બિંદુ આપે સાંભળ્યો. વિષય હતો જીવન યાત્રા, પઠન હતું નિમિષા શાહનું. આ પ્રસંગ છે આકાશવાણીના ભુજકેન્દ્રનું. પ્રસ્તુત છે ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના. પ્રથમ સાંભળીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાની રચના હસન ઇસ્માઇલ સોલંકીના સ્વરમાં.

युद्ध समाप्ति पर विभीषण का राजतिलक हो चुका है। श्री राम ने वानर भालुओं को साधुवाद दिया, कहा, तुम्हारे ही बल पर रावण जैसे प्रबल शत्रु का वध हुआ और विभीषण ने लंका का राज्य पाया। वानर भालू ऐसा वचन सुन कृत कृत्य हो गए। जनक नंदिनी का कुशल समाचार ले आने का प्रभु का आदेश पाकर हनुमान एक बार फिर अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। उन्हें रावण तथा अन्य राक्षसों के वध का समाचार सुनाते हैं। हनुमान को आशीष कर सीता जी स्वामी के दर्शनों के लिए अपनी आकुलता प्रकट करती हैं, कहती हैं, अब कुछ ऐसा उपाय करो कि मुझे प्रभु के दर्शन अविलंब प्राप्त हों। वापस लौटकर हनुमान ने श्रीराम लक्ष्मण को जनक नंदिनी का कुशल समाचार सुनाया। लंकापति विभीषण तथा अंगद को आदेश मिला कि हनुमान के साथ जाकर वे शीघ्र सीता को सादर लिवा लावें। उधर राक्षसियों ने सीता का अद्भुत श्रृंगार किया, विभीषण द्वारा प्राप्त वस्त्र आभूषणों से उन्हें सजाया और सुंदर पालकी में बिठाया। किंतु श्रीराम की आज्ञा है कि जनक नंदिनी पांव पैदल चलकर आवे ताकि वानर सेना माता को भली भांति देख सके।

0: दशदिनानाम् आरक्षी अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः षोडशे सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनिमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनिमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्त राज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को

আছে রাস বিহারি দেশাই। রচনা ছে দরিয়া সাহেবনি।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी

0: सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जल डमरूमध से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीषा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
2: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
1: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
3: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
4: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
5: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112317 और 0112314444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देश बंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन, कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो। माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू कर

गेल छा रखदल मायत्रे पुत्र के चूं विलायती शिक्षण जी गेल छा रखदल मायत्रे पुत्र के चूं पुत्र शिक्षण जी दौड़ में टिकणो हुए तो भाषाऊं अना ब विलायतियूं सिखणियूं पवंदियूं तॾहिं छोरो चई अदा आऊं पंहिंजी माँ ॿोली में भणा त कीअं थिए अगली आहे डॉक्टर जे अखीअ म्यानू रूंगा सिरी पिया जॾहिं भ्रूण जी परख करायला आवल उन न जनमियल निगरी जे निठारे माइत्रे जी गाॾी पुठियां लिखियलु हुओ बेटी बचावो जटायू चई इच्छा मृत्यु जो वरदान त मूंखे पवो आऊं धारियां त अञा लमो जीवी सघां पण पोइ राम जे खोरे में थोरो मरी सघां पोइ राम जे खोरे में थोरो मरी सघां अगली कविता आहे पहला अछत में ॾाॾा लुगड़े में अगड़ी विझी पहिरींदा हुआ आऊं चां बापा अगड़ी वारा लुगड़ा न पहिरीजां पंहिंजो ख़राबु लॻे थो तेर बापा चवंदा हुआ पुत्र हैव राखे ख़बर न पए ऐं वीडा थींदा तेर ख़बर पवंदी ने अॼु घर में छत आहे ऐं लाट माट लुगड़ा पहिरियां थो त छोरा चई था अधा ऐं अगड़ी वारी जींस पैंट पहिरियो हिन फैशन वारे ज़माने में पंहिंजो ख़राबु लॻे थो अगली कविता आहे उमिरि जे आख़िरी पड़ाव में संसार जा विषय ॿोरो पजवीअ था झांखियूं अखियूं झखीअ थियूं दृश्य खासा खासा ॾंद इछे था सवाद मिठा मिठा डगू मगू थींदल पग झंखीअ था लमी मंजिल ताईं वञे ला अरे जिंदगी जी दौड़ में दौड़दे मन त चवंदे ज भुलाइजी वियो जातस्य ध्रुवो मृत्यु अगली कविता आहे जय सूंदी ऐं जहर पीधा न तै सुधी ऐं शंकर लगदा न केण ॾियो भेगा बेर खट्टा निका राम धरा ते अचदा न निका राम धरा ते अचदा न अगली कविता आहे अॼु हिकिड़े सेठ माइत्रे खे घरड़ा घर में छॾी ने संते जा पगला कराई अॼु हिकिड़े सेठ माइत्रे खे घरड़ा घर में छॾी ने संते जा पगला कराए कोच घर में शांती बनी रहे पही पगला माइतर जहिड़ा खरा ही पगला माइतर जहिड़ा खरा अगली कविता आहे घरवारी जे वौद साम्हूं लाचार हिकिड़ो माण्हू घरड़ा घर में माइत्रे खे मिलणु वियो तॾहिं आयखे जे खाधल माइत्रे खे पुत्र खे हिरख से खीकारियऊं पुत्र खोरे में मथो रखी उसां से भेर रूंगा सारे पर इन खे थियो मुंहिंजा पुत्र मूंखे घरड़ा घर में छॾी अचींदो तैर कुर थींदो मुंहिंजो पुत्र मूंखे घरड़ा घर में छॾी अचींदो तैर कुरो थींदो ने छेली टूकी रचना आहे पंज तारे वारी होटल में कमु कईंदल मजूर खे बुख लॻी त को न ॾिसे ती हिकिड़ी सैंडविच खाई ॻणे पंज तारे वारी होटल में कमु कईंदल मजूर खे बुख लॻी त को न ॾिसे ती हिकिड़ी सैंडविच खाई ॻणे ही घटना सीसीटीवी कैमरे में अची वई हिन कारण से होटल जो मालिक हिकिड़े ॾींहं जो पकार कपी ॻणे निसा सो खांदे सीसीटीवी खे थियो छाल मुझूं अखियूं नवियूं त भाभी कवि श्याम ख़ूब सरस लिखे था अने रूबरू पण इन जी कविता माणिबो अॼु हाणे थोड़ा कच्छी लोकगीत सुणाई त हलो लोकगीत सुणूं

0: सुनते रहिए आकाशवाणी पूंछ।
1: रजू करें छे सुगम संगीत नो कार्यक्रम गीत सुधा।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी, कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक और समकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद

0: ने की थी।
1: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी।
2: इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा, देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
1: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियां तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियां ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे, अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कल मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: क्या बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अरे क्या हुआ?
1: अरे चुबा चुबा क्या हुआ बेटा?
0: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
1: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
0: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
1: चुप चुप
0: सजा सजा बेटे सजा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सजा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। है सोचा बेटा, सोचा सोचा, शाबाश सजा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
1: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
0: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है।
1: हा?
0: जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है
1: वो।
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी
1: चलो
2: चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: तो गहना लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बड़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे।

0: अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
0: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
1: क्यों?
0: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
2: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। हाँ, आगे चलकर देखते हैं।
3: ये देखो, ये पेड़
1: देख लो।
2: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़ और वही बबूल भी है। चलो अम्मा काटे,
1: चलो इधर से निकल कर आओ।
2: अच्छा
3: ध्यान से बेटा।
2: आई
1: क्या हुआ चुप्पा?
3: क्या हुआ?
2: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया। आई
1: अरे दिखा तो।
2: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
0: ठीक है ठीक है, नहीं काटेंगे। हाँ।
2: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
0: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
1: हाँ।
0: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: और नुकसान भी क्या है?
0: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
0: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़े मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
2: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
0: हाँ।
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
0: हाँ बिल्कुल।
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बतवा रहने दे इसको भी।
0: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
0: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
0: और क्या?
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
1: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
1: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
0: तू समझ गई? अम्मा
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
1: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
1: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
1: चल।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी।

0: गीत गाएंगे, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे, हाँ पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं, क्यों बुधनी तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का, चल
0: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में

0: बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
1: हाँ?
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
5: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपे सांभळ्यो। आ प्रसारण छे आकाशवाणीना भुज केन्द्रनुं।

0: सुनते रहिए आकाशवाणी भूज।
1: रजू करें छे फिल्म संगीत नो कार्यक्रम मनोरंजन। प्रथम सांभशो अनुराधा पौडवाला ने कुमार सानू युगल स्वर में फिल्म दिल है कि मानता नहीं नो गीत।

0: Okay, kepahan benar suala. खुल जाए बंद अकल का ताला।
1: ओ बनारसी पान ना शौकीन भाई, आ बनारसी पान खाईने पर तमारी अकल नु ताळो खुल्यु नथी लागतु। आम जाए रस्ता ऊपर पिचकारी मारता

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री 3 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कल सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हराइजन से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसे विश्व के लिए प्रयासरत हैं जहां विकास अधिक समावेशी हो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं समकालीन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुकदमों को कम करना और विश्वास आधारित नियामक के ढांचे को मजबूत करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और पात्र मतदाताओं से भरे हुए आवेदन पत्र एकत्र करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली के संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने श्री खड़गे को शपथ दिलाई। श्री खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक दोपहर में लगभग 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 425 अंक गिरकर 76,676 पर और निफ्टी 112 अंक कम होकर 23,944 पर था। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन जुस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज केंद्र से आप सभी सुनने वाले हमारे प्यारी फौजी जवानों और बहनों के लिए यह है कार्यक्रम जय भारती।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुशबू को फैलने का बहुत शौक होता है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। भाई क्या बोले, अभी तो हवाएं शुष्क सी है। वैसे तो सभी चाहेंगे कि भले ही हमें कुछ चिपचिपापन सा महसूस हो, पर वो तो है कि हवाएं भर कर आई है कुछ नमी सी, और वो ही तो है उसकी दावेदार कि अब मौसम बदलने वाला है और वे हवाएं लाएंगी बारिश की फुहार। पर ओह छोड़िए, बाद में बात करते हैं। आइए सुनते ये गाना आशा भोसले जी की आवाज में। गीत नीरज का है, संगीत रोनोदेव मुखर्जी ने लिखा है, और फिल्म तू ही मेरी जिंदगी फिल्म से ये गाना हमने लिया है।

हमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं छांव ढूंढनी पड़ती है। दोस्तों हम सभी बार बार याद करेंगे, बार बार गर्व करेंगे कि हमारी सभी फौजियों के लिए कारगिल युद्ध कौन भूल सकता है ना भला। उसी युद्ध में देश की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, हेतु देश हित में अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे सभी जवानों को शत शत वंदन। आज उसी बात के चलते हम याद करेंगे वीर कैप्टन सौरभ कालिया जी को, जिनकी आज जन्म जयंती है। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस, शौर्य और वीरता के प्रतीक अमर शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चलिए उन्हीं को समर्पित करते हुए सुनते हैं केसरी फिल्म का ये गीत, हमने लिया है तेरी मिट्टी में मिल जावा। बी प्राक ने इसे गाया है और शब्द की डोर मनोज मुनच्छिर की, संगीत दिया है आरको ने।

आज है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। हर साल 29 जून को जिसे मनाया जाता है उष्णकटिबंधीय। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस द्वारा शुरू किया गया यह दिन ट्रॉपिक्स देशों के सामने आने वाली खास चुनौतियों को दिखाता है और इस इलाके की असाधारण बायोडायवर्सिटी, रिच कल्चर और इकोनॉमिक पोटेंशियल पर ध्यान खींचता है। इस आयोजन का मकसद सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और ट्रॉपिकल इलाके के सामने आने वाले जरूरी मुद्दे को बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें शामिल है क्लाइमेट चेंज और जंगलों की कटाई, गरीबी और कुपोषण की ज्यादा दर, तेजी से शहरीकरण और इनफॉर्मल स्लम बस्तियों का बढ़ना। दोस्तों, ये इस जय भारती कार्यक्रम में अब आइए हम सुनेंगे लिबास फिल्म का ये गाना। हमने लिया है लता जी की मीठी आवाज़ है, गुलजार जी के शब्द है और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे विश्वनाथ का गाया फिल्म का ये गाना। इसे लिखा था एमजी हशमत ने और संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम की युगल स्वरों में ये गाना। हमने लिया है इसे वीर जरा से, शब्द है जावेद अख्तर जी के और संगीतबद्ध किया है मदन मोहन जी ने।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। आइए सुनते हैं इस फिल्म का लिया हुआ गाना श्रेया घोषाल और सोनू निगम और विनय की आवाजों में। इरशाद कामिल के शब्द लिखे हैं और संगीत दिया है विनय तिवारी ने।

अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, भला जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आइए सुनते हैं शापित फिल्म का ये गाना, श्रेया घोषाल की आवाज में, शब्द समीर के और संगीत चिरंतन भट्ट का।

अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में अभी आप सुन रहे हैं सलामी फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण जी ने। दोस्तों इसी के साथ आकाशवाणी अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज केंद्र से ये जय भारती कार्यक्रम अभी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हमारे सभी फौजी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।

0: और इसी के साथ समय हो चला है कुछ ही पलों में दोपहर समाचार सुनने का। आइए सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजंस से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
4: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार

0: कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब

सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 354 અમારી બીજી સભામાં આપ સૌ શ્રોતા મિત્રોનું સ્વાગત છે. અમારા સ્ટુડિયોની ઘડિયાળમાં બરાબર 5 થવા જાય છે. શ્રોતા મિત્રો, સભાના પ્રારંભે સાંભળીશું હિન્દી સમાચાર, જે અમે દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે કરીશું.
1: ये आकाशवाणी है. अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी. हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज शाम आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया
3: गया. आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी.
4: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's defense investiture ceremony, in which Honorable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring Dati Vishisht Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal and Sarvottam Youth Seva Medal.
3: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं. उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ साथ ही मौजूद हैं इस वक्त. सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन. कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर पधारेंगी और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा. हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि 105 बहादुरों को, सैनिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा. राष्ट्र की रक्षा के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए 56 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएं देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध में विशेष बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 7 सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे.
4: Dear listeners, as we witness this distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the Honorable President.
3: हम ये बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार. उपराष्ट्रपति जी इस वक्त पधार चुके हैं और वे विराजमान हैं और उन्हीं के साथ ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ 3-3 सैनिक मौजूद हैं, जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे और आगे की रोज में वे लोग, इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे. यह ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहां पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में.
4: A total of 105 awards will be conferred to the awardees today. A very prestigious event that honors armed forces, security personnel for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
3: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुबेदार प्रेम बहादुर गुरंग बैंड मास्टर हैं महा रेजिमेंट सेंटर सागर के उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। और ये बिगुल की आवाज आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करते हुए गणतंत्र मंडप में पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियां पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई, नीले रंग का बॉर्डर और थोड़ा सा सुनहरी गुलाबी रंग उनकी साड़ी में, उनके आगे और पीछे उनके एडीसीज चलते हुए धीरे धीरे सधे हुए कदमों से राष्ट्रपति जी अपने आसन तक जाती हुई, इनके ठीक पीछे बुद्ध की प्रतिमा।

नमस्ते, ये आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हां पिंकी बेलाणी खां ख़बरूं ॿुधंदा। सभ खां पहिरीं ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अॼु राष्ट्रपति भवन में साल जे ॿिए रक्षा सम्मान कार्यक्रम में बहादुरी इनाम अता कया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयो आहे त सेशल्स जी संदसि जी यात्रा तमामु शफ़ी रही। गृह मंत्री अमित शाह अॼु नई दिल्ली में यमुना जल योजना जे निर्माण तोड़े अमलीकरण जे समझौते ते सहियूं विधियूं। बचाव मंत्री राजनाथ सिंह अॼु नई दिल्ली में DRDO खे डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर DFP 2026 जारी कयो। सिहत ऐं कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा अॼु नई

0: दिल्ली में सिहत खिते वास्ते मुख्तलिफ डिजिटल शुरुआतुनि जी शुभ शुरुआत कई। हाणे खबरूं तफ़सीलवार ॿुधंदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अॼु राष्ट्रपति भवन में साल जे ॿिए रक्षा सम्मान कार्यक्रम में बहादुरी इनाम अता कया। इन मौके ते सदर मोहतरमा हथियारबंद दस्तनि, मर्कज़ी हथियारबंद पुलिस दस्तनि, राज्य तोड़े मर्कज़ी ज़ेरशाह रियासतुनि जे पुलिस कर्मचारियुनि खे वीरता इनाम अता कया। इहे इनाम गैर मामूली बहादुरीअ वास्ते सिपाहियुनि खे ॾिना वेंदा आहिनि। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, बचाव मंत्री राजनाथ सिंह ऐं ॿिया मर्कज़ी मंत्री, हथियारबंद अमलनि जा बर्ख अमलदार बि इन मौके ते हाज़िर रहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयो आहे त सेशल्स जी संदसि जी यात्रा तमामु शफ़ी रही ऐं इन सां भारत सेशल्स वाधू दोस्ती गहरी बणजंदी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदीअ चयो त गुज़िरियल 50 सालनि में ॿिन्ही मुल्कनि विच में रिश्ता गहरे विश्वास ऐं विर्छ कयल विकास ते आधारित रहिया आहिनि ऐं ईंदड़ 50 सालनि में इहे रिश्ता नवनि वीचारनि, स्थिरता ऐं विर्छ कयल खु़शहालीअ सां साराया वेंदा। प्रधानमंत्री सेशल्स जे आज़ादीअ जा 50 साल पूरा थियण ते मुंतज़िम राष्ट्र ॾींहुं समारोह में शिरकत करण ते पिण ख़ुशी ज़ाहिर कई। हुन जनाब सेशल्स जे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ऐं सरकार ऐं तोड़े सेशल्स जे अवाम जा शुक्राना बजा आंदा। प्रधानमंत्री जे 3 ॾींहनि जे दौरे वाबस्त पेश आहे हिकु अहिवालु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: घरू मंत्री अमित शाह अॼु नई दिल्ली में यमुना जल योजना जे निर्माण तोड़े अमलीकरण जे समझौते ते सहियूं विधियूं। घरू मंत्री अमित शाह इन मौके ते चयो त इन समझौते सां हरियाणा ऐं राजस्थान जे अवाम जे अटकल 3 ॾहाकनि खे जारी जल मुश्किलात जो हल थियो आहे। इन मौके ते जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल चयो त
2: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: बचाव मंत्री राजनाथ सिंह अॼु नई दिल्ली में DRDO के डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर DFP 2026 जारी कयो। उन मौके ते श्री सिंह चयो त DFP 2026 खोज ऐं विकास इकोसिस्टम मां पैदा थींदड़ सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स ऐं तकनीकुनि जो तेज़ीअ सां विकास तोड़े रक्षा टुकड़ियुनि में उन्हनि जी शामिलगिरीअ खे सहंजो बणाईंदो। बचाव हज़रात मुताबिक़ DFP 2026 जो मक़सदु बचाव विभाग अंदरि मुख़्तलिफ़ सतहनि ते कार्य करण जी सघ खे वधाइण आहे। ही ख़बरूं तव्हां आकाशवाणीअ तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हीं असांजे YouTube चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते पिण ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जी तफ़सील वास्ते तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। उपराष्ट्रपति ए राज्यसभा के सभापति सी आर राधाकृष्णन अज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा के अठन नवन चूंडजल ए बेहर मुकरर थियल मेंबरन के कसम खणाई। इन मौके से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पार्लियामेंट्री कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ए सेहत तोड़े कुटुंब कल्याण मंत्री जेपी नड्डा पिण मौजूद हुआ। कसम खणण वाली रस्म में गुजरात जो मान सिंह मेरामन परमार।

0: ऐं ॿिया केतिरा ई अॻवान शामिल हुआ। विच गुजरात इलाइक़े ते मर्कोज़ ॿिनि ॾींहनि वारो वाइब्रेंट गुजरात इलाक़ाई सम्मेलन अॼु बड़ौदा में आयल GSFC यूनिवर्सिटीअ में शुरू थियो। सम्मेलन जो इफ़्तिताह गुजरात जे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐं मर्कज़ी रहायशी तोड़े शहरी मामलनि तोड़े बिजली शक्ति मंत्री मनोहर लाल जी हाज़िरीअ में थियो। इन मौक़े ते मर्कज़ी मंत्री मनोहर लाल उद्योगिक विकास खे रफ़्तार ॾियण में बिजली खिते जे अहम भूमिका ते रोशनी विधी। पेश आहे हिकु अहिवाल।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: सिहत ऐं कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा अॼु नई दिल्ली में सिहत खिते लाइ मुख़्तलिफ़ डिजिटल शुरूआतुनि जी शुभ शुरूआत कई। सभा खे ख़िताब कंदे श्री नड्डा शुरूआतुनि खे सरकार द्वारां हासिल कयल हिकु अहम हासिलात तौरु सॾायो ऐं चयो त इन सां मुल्क जे नागरिकनि लाइ सिहत सहूलियतूं वधीक सस्तियूं तोड़े सहंजियूं बणियूं आहिनि। ओडिशा जे पवित्र शहर पुरीअ में अॼु ज़बरदस्त रूहानी जोश जो माहौल हो। पुरीअ में लखे श्रद्धालु सालियाने देव सनानु पूनम लाइ कठा थिया। इहो विश्व में मशहूर रथ यात्रा जो स्वागत करण वारो समारोह आहे। विदेश सेक्रेटरी विक्रम मिश्री अॼु उन्हनि ख़बरुनि खे थुॾियो आहे जंहिं में दावा कयो वियो हो त श्रीलंका में मुंतज़िम सलामती सम्मेलन दौरान भारत ऐं पाकिस्तान विच में ॿिए दौर जी ॻाल्हि ॿोल्हि थी गुज़री। इन सां लाॻापियल ख़बरुनि ते श्री मिश्रीअ चयो त इन तरह जी ॻाल्हि न त कोई नई आहे, न ई भारत सरकार इन खे कोई मान्यता ॾिए थी। CBSE अॼु टिनि ॿोलियुनि वारी नीतीअ ते रहनुमा हिदायतूं जारी कयूं। बोर्ड चयो त दर्जे 10 जे मौजूदु बैच खे नई ॿोलीअ वारी नीतीअ जे पालन न करणो पवंदो। बोर्ड इहो बि चयो त दर्जे 7, 8, 9 में पढ़ंदड़ मौजूदु बैच जे शागिर्दनि खे बि दर्जे 10 ताईं पहुचण ते टीं ॿोलीअ में बोर्ड इम्तिहान ॾियण जी ज़रूरत कोन पवंदी। बोर्ड चयो त क्लास मुताबिक़ वसीलनि जी सामग्री वक़्त ते दस्तियाब कराई वेंदी। पाकिस्तान जे सलामती अमलनि कल राति अफ़गानिस्तान सरहद वेझो हवाई हमला कया। इन में पक्तिका ऐं कुनार प्रांत जे इलाइक़े खे निशानो बणायो वियो। आख़िर में मुख्य ख़बरूं हिकु दफ़ो ॿीहर ॿुधंदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अॼु राष्ट्रपति भवन में साल जे ॿिए रक्षा सम्मान कार्यक्रम में बहादुरी इनाम अता कया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयो त सेशल्स जे संदसि जी यात्रा तमामु शफ़ी रही। गृह मंत्री अमित शाह अॼु नई दिल्ली में यमुना जल योजना जे निर्माण ऐं अमलीकरण जे समझौते ते सहियूं विधियूं। बचाव मंत्री राजनाथ सिंह अॼु नई दिल्ली में DRDO खे डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर DFP 2026 जारी कयो। सिहत ऐं कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा अॼु नई दिल्ली में सिहत खिते वास्ते मुख़्तलिफ़ डिजिटल शुरूआतुनि जी शुभ शुरूआति कई। इते ख़बरूं पूरियूं थियूं। नमस्ते।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अहमदाबाद बड़ौदा केंद्र से युवाओं का प्रिय कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी साथी कीर्ति वैष्णव। दोस्तों, हम रोज रेडियो पर आवाजें सुनते हैं, गानों का मजा लेते हैं और दुनिया भर की खबरें जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टूडियो के उस पार माइक के पीछे की दुनिया कैसी होती है? हाल ही में मुझे उस जादुई दुनिया को बेहद करीब से देखने और जीने का मौका मिला। जी हाँ, आज के इस खास एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आकाशवाणी अहमदाबाद में बिताए मेरे अनुभव के बारे में। भारत सरकार के माय भारत पोर्टल के माध्यम से मुझे आकाशवाणी अहमदाबाद में एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम यानी व्यवहारिक शिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया। यह कोई 2-4 दिनों की सतही वर्कशॉप नहीं थी, बल्कि पूरे 120 घंटों का एक ऐसा सफर था जिसने रेडियो माध्यम को लेकर मेरी समझ को बुनियादी तौर पर बदल दिया। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ इसी 120 घंटे के सफर की एक एक परत खोलूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि जब एक नई इंटर्न इतने बड़े संस्थान में कदम रखती है तो वह किन अनुभवों से गुजरती है। अक्सर हमारे मन में यह धारणा होती है कि आकाशवाणी जैसे देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान के भीतर जाकर काम सीखना, वहाँ इंटर्नशिप या ट्रेनिंग पाना एक बेहद मुश्किल प्रोसेस होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस दौर में यह पूरी प्रक्रिया बेहद सरल हो चुकी है। भारत सरकार का एक बेहद महत्वाकांक्षी और युवाओं को समर्पित आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका नाम है माय भारत। यह पोर्टल देश के युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों के साथ सीधे जुड़कर व्यवहारिक यानी एक्सपीरियंशियल नॉलेज प्राप्त करने का एक सीधा मंच प्रदान करता है। जब मैंने इस पोर्टल को एक्सप्लोर किया तो मुझे आकाशवाणी अहमदाबाद के एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली। मैंने बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल थी और काफी ऑर्गेनाइज्ड थी। आवेदन करने के कुछ दिनों बाद एक सुबह जब मैंने रोज की तरह अपना ईमेल इनबॉक्स चेक किया तो वहां माय भारत की ओर से आया एक आधिकारिक मेल मौजूद था। सच मानिए दोस्तों, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह ईमेल मेरे लिए सिर्फ एक सूचना नहीं थी, बल्कि रेडियो की विशाल दुनिया में मेरा पहला कदम था। मुझे हमेशा से गाने सुनने का बहुत शौक रहा है। रेडियो पर गाने सुनना मेरी पसंदीदा हॉबी रही है और यहाँ आकर रेडियो के कामकाज को सीखने का अवसर मिलना मेरे लिए बेहद एक्साइटिंग था। यह कार्यक्रम, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे 120 घंटों का था। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी छात्र को केवल थ्योरी या किताबों तक सीमित न रखकर रेडियो प्रोडक्शन और रेडियो प्रेजेंटेशन की जमीनी हकीकत और उसकी तकनीकी बारीकियों से पूरी तरह रूबरू कराना था। जिस दिन मुझे संस्थान में रिपोर्ट करना था, उस सुबह मैं बहुत नर्वस थी कि पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे और मैं खुद को वहाँ कैसे ढाल पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने मुख्य भवन के प्रोग्राम विभाग में कदम रखा, वहाँ सभी के व्यवहार ने मेरी सारी हिचकिचाहट और डर को एक ही पल में पूरी तरह समाप्त कर दिया। वहाँ सबसे पहले मेरी मुलाकात दीपशिखा दुर्गापाल मैम से हुई, जो यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर हैं। उन्होंने बहुत ही सहजता से मुझे अपने केबिन में बिठाया और आकाशवाणी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, इसके विभिन्न भागों से खुद इंट्रोड्यूस कराया। दीपशिखा मैम से मुलाकात के बाद मुझे प्रोग्राम विभाग के ही एक और अत्यंत अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी से मिलने का अवसर मिला, राजेश खराड़ी सर, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं और कई प्रोग्राम्स हैंडल करते हैं, जिनमें से एक है हमारा चहिता युववाणी। उन्होंने मुझे बहुत ही दोस्ताना माहौल में समझाया कि युवाओं के लिए कार्यक्रम तैयार करते समय हमारी टोन, हमारा लहजा कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युववाणी का मतलब सिर्फ लाउड होना या बिना सोचे समझे बोलना नहीं है, युवा केंद्रित कार्यक्रमों में एक विशेष ऊर्जा और उत्साह होना चाहिए। राजेश सर ने मुझे माइक्रोफोन तकनीक, आवाज के मॉड्यूलेशन और स्क्रिप्ट को ऑन एयर पढ़ते समय बरती जाने वाली व्यवहारिक सावधानियों से परिचित कराया, जो बातें हमें किसी भी कॉलेज थ्योरी की किताब में नहीं सिखाई जा सकती। इसी दौरान मुझे यहाँ होने वाले अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में जानने का मौका मिला। जैसे यहाँ उर्दू मजलिस नाम का एक बहुत पुराना और मशहूर प्रोग्राम तैयार किया जाता है, जो पूरी तरह से उर्दू साहित्य, शायरी और गजलों को समर्पित है। इसके बाद यहाँ हिंदी जगत प्रोग्राम आता है, जिसके जरिए हिंदी भाषा को बढ़ावा देने, साहित्य पर चर्चा करने और गंभीर विषयों को श्रोताओं के सामने बहुत अच्छे तरीके से रखने का काम किया जाता है।
लेकिन मुझे जो प्रोग्राम सबसे ज्यादा छू गया वह था आदि जाति। यह प्रोग्राम पूरी तरह से हमारे आदिवासी समाज के रहन सहन, उनकी समृद्ध संस्कृति, उनके त्योहारों और उनके पारंपरिक लोक गीतों पर आधारित होता है। इस प्रोग्राम को बनते देखकर मुझे यह साफ समझ आया कि आकाशवाणी किस प्रकार दूर दराज के जंगलों और गांवों में रहने वाले लोगों की आवाज बनता है और उन्हें देश से जोड़ता है। इसी तरह महिलाओं को आगे बढ़ाने, अधिकारों, उनकी सेहत, शिक्षा और उनकी सफलता की कहानियों को सामने लाने के लिए यहाँ सहियर नाम का एक बहुत ही पॉपुलर महिला प्रोग्राम बनाया जाता है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को शामिल किया जाता है।

है और इन सभी अलग अलग प्रोग्राम्स के बीच में आता है हमारा अपना युववाणी प्रोग्राम, जो देश के युवाओं की सोच, उनकी रचनात्मकता और उनकी प्रतिभा को एक सही और सकारात्मक दिशा देने का काम करता है। तो दोस्तों, आकाशवाणी के इन अलग अलग प्रोग्राम्स और उनके पीछे की सोच

दोस्तों, जब हम एक आम इंसान के तौर पर रेडियो के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में यह इमेज होती है कि यह पूरी तरह से एक क्रिएटिव और आर्टिस्टिक माध्यम है, जहां बस लोग आते हैं, बोलते हैं, गाने बजाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस 120 घंटे की ट्रेनिंग के दौरान मुझे यह बहुत करीब से समझने का मौका मिला कि इतने बड़े रेडियो स्टेशन को 24 घंटे बिना रुके चलाने के लिए इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी लगातार काम करता है। दुनिया के किसी भी बड़े मीडिया हाउस की तरह रेडियो को लगातार चलाने और उसके खर्चों को पूरा करने के लिए विज्ञापन एक रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। आकाशवाणी के विज्ञापन विभाग के काम को समझना मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। हम रेडियो सुनते समय गानों के बीच में या प्रोग्राम के शुरू और खत्म होने पर जो विज्ञापन सुनते हैं, उन्हें आकाशवाणी की ऑफिशियल और टेक्निकल भाषा में स्पॉट्स कहा जाता है। इन स्पॉट्स को मैनेज करना और इनकी बुकिंग करना कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे पूरा गणित और सख्त नियम काम करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मुझे बहुत अच्छे से सिखाया गया कि ये स्पॉट्स कैसे बुक किए जाते हैं। विज्ञापन देने वालों के डिमांड और उनके बजट के हिसाब से इन स्पॉट्स का समय तय किया जाता है, जैसे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड का स्पॉट। इसके बाद प्रसार भारती के नियमों का पालन करते हुए इन विज्ञापनों को ऑन एयर शेड्यूल में शामिल किया जाता है। यहाँ हर एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई विज्ञापन 10 सेकंड का है तो वह ठीक 10 सेकंड पर ही शुरू और खत्म होना चाहिए। कमर्शियल फायदों को देखने के साथ साथ रेडियो की मर्यादा और सामाजिक जिम्मेदारी का बैलेंस बनाए रखना होता है। इस पूरे सिस्टम की बारीकियों को सिर्फ दफ्तर के कमरों में बैठकर नहीं समझा जा सकता था, इसलिए मेरी इस ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए मुझे एक छोटी सी फील्ड ट्रिप पर भी जाने का मौका मिला। यह एक तरह की मार्केटिंग फील्ड ट्रिप थी। इस ट्रिप के दौरान मुझे यह करीब से देखने का मौका मिला कि आकाशवाणी की मार्केटिंग टीम किस तरह अलग अलग सरकारी विभागों और प्राइवेट क्लाइंट्स के साथ तालमेल बिठाती है। चूंकि आकाशवाणी एक सरकारी ब्रॉडकास्टर है, इसलिए इसके विज्ञापन के रेट्स और इसके नियम बहुत ही साफ और सख्त होते हैं। उन नियमों के दायरे में रहते हुए प्राइवेट FM चैनलों के कंपटीशन के बीच किस तरह रेवेन्यू यानी कमाई की जाती है, कैसे नए क्लाइंट्स को जोड़ा जाता है और कैसे विज्ञापन देने वालों को आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी क्रेडिबिलिटी के फायदे के बारे में समझाया जाता है, यह देखना मेरे लिए बहुत नया अनुभव था। इस फील्ड ट्रिप ने मुझे विज्ञापन बाजार की प्रैक्टिकल समझ दी और मुझे यह सिखाया कि एक सफल रेडियो स्टेशन के पीछे केवल स्टूडियो के अंदर बैठकर बोलने वाले लोग ही नहीं होते, बल्कि बाहर फील्ड पर काम करने वाली एक बेहद कुशल और मेहनती मार्केटिंग टीम भी शामिल होती है। चलिए, कमर्शियल दुनिया के इन अनुभवों की बातों को यहाँ थोड़ा सा रोकते हैं और दोबारा चलते हैं संगीत की दुनिया की तरफ। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म जहर का बेहद रूमानी और लोकप्रिय गीत, अगर तुम मिल जाओ।

दोस्तों, इस पूरी 120 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान मैं खुद को बहुत ही लकी महसूस कर रही थी कि मुझे ऐसे समय पर आकाशवाणी अहमदाबाद का हिस्सा बनने का मौका मिला जब आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 साल पूरे कर रहा था। जी हाँ, आकाशवाणी अहमदाबाद में प्रसारण की शुरुआत 8 जून 1936 को हुई थी और इसी साल 8 जून को आकाशवाणी ने देश की सेवा में अपने शानदार 90 साल पूरे किए हैं। 9 दशकों की यह लंबी यात्रा केवल किसी एक सरकारी संस्थान की यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे देश के इतिहास, संस्कृति और विकास की एक जीती जागती गवाह रही है। इस 90वीं सालगिरह के मौके पर आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र की तरफ से कई बहुत ही भव्य और शानदार प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया था, जिनका हिस्सा बनना और जिनमें एक ट्रेनी के रूप में काम करना मेरे लिए जीवन भर की एक अनमोल याद बन गई है। इसी उत्सव के दौरान बीते 27 मई को एक बहुत ही अनोखा सुगम संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह प्रोग्राम किसी बहुत बड़े लाइव कॉन्सर्ट की तरह था, जहां गुजरात और देश के कई संगीत कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरे माहौल को जादुई बना दिया था। इस प्रोग्राम के पीछे की स्टेज व्यवस्था और लाइव साउंड मिक्सिंग को देखना मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था। यहाँ आने से पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि आकाशवाणी में ऐसा कुछ भी होता है। इसके अलावा समाज में फिटनेस और एकता का संदेश देने के लिए एक 4 किलोमीटर लंबी वॉकेथॉन का भी आयोजन किया गया था। इस वॉकेथॉन में आकाशवाणी के सीनियर अधिकारियों और पूरे स्टाफ ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया था। इन सभी बड़े आयोजनों के मैनेजमेंट को करीब से देखना और उनमें एक वॉलंटियर के रूप में मदद करना मेरे लिए टीम वर्क सीखने का एक बहुत बड़ा मौका था। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान मुझे आकाशवाणी के मेन लाइव रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और ट्रांसमिशन रूम को देखने और उनके काम को समझने का मौका मिला। लेकिन पूरे परिसर में जिस एक जगह ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह थी यहाँ की विशेष लाइब्रेरी। दोस्तों, जब मैंने इस लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा तो ऐसा लगा मानो कि किसी टाइम मशीन में बैठकर दशकों पीछे आ गई हूँ। आज के आधुनिक दौर में जहाँ आकाशवाणी का पूरा सिस्टम पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो चुका है, जहाँ सब कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर के जरिए एक क्लिक पर चलता है, वहीं इस विशेष लाइब्रेरी में आज भी दशकों पुराने विंटेज ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, बड़े बड़े स्पूल टेप्स और पुरानी रिकॉर्डिंग कैसेट्स को बहुत ही संभाल कर सुरक्षित रखा गया है। इन रिकॉर्ड्स में हमारे देश के महान नेताओं के असली भाषण, देश के बड़े बड़े संगीतकारों की दुर्लभ प्रस्तुतियां और महान लेखकों की मूल आवाजें पूरी तरह सुरक्षित है। अतीत की उस अनमोल विरासत को अपनी आंखों से देखना, उन्हें छूना और यह समझना कि तकनीक ने बीते सालों में कितना बड़ा सफर तय कर लिया है, यह मेरे लिए एक बहुत ही भावुक और ज्ञान बढ़ाने वाला अनुभव था। इसके साथ ही इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल अनुभव मिला। हाल ही में सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कई विशेष प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेटिव रिकॉर्डिंग्स तैयार की जा रही थी। मुझे इन विशेष कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की पूरी प्रोसेस को देखने और उनकी एडिटिंग को समझने का मौका मिला। ये प्रोग्राम मुख्य रूप से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग सरकारी विकास योजनाएं और आर्थिक प्रगति पर आधारित थे। इन तथ्यों से भरपूर टॉक शोज को सुनते हुए मुझे देश के विकास कार्यों और योजनाओं की एक बहुत ही साफ समझ मिली। सबसे बड़ी बात, मुझे अपने अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को लाइव रिकॉर्डिंग रूम में बोलते हुए सुनने का मौका मिला। लेकिन इस पूरे प्रशिक्षण की सबसे खूबसूरत और रोमांचक बात यह रही कि यह केवल एक तरफा देखना या सुनना नहीं था। राजेश सर और दीपशिका मैम ने मुझ पर पूरा भरोसा जताया और उन्होंने मुझे खुद काम करने के लिए माइक के सामने उतारा। मुझे खुद युववाणी के प्रोग्राम्स के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। मैंने खुद रिसर्च किया, स्क्रिप्ट लिखी और फिर पहली बार ऑफिशियल तौर पर आकाशवाणी के मुख्य स्टूडियो में बैठकर माइक के सामने अपनी आवाज में उन प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी किया। जब पहली बार माइक के सामने रेड लाइट जली और राजेश सर ने कंसोल रूम से इशारा किया, तो उस समय में जो रोमांच था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैंने रिकॉर्डेड ऑडियो फाइल्स को डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर एडिट करना सीखा। कैसे सांसों की आवाज को हटाया जाता है और कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक को आवाज के साथ परफेक्ट लेवल पर सेट किया जाता है। क्योंकि आज का जमाना पूरी तरह से सोशल मीडिया का है, इसलिए मैंने आकाशवाणी अहमदाबाद के सोशल मीडिया पेजों के लिए आकर्षक पोस्टर्स और डिजिटल पोस्ट भी डिजाइन किए और यह समझा कि एक पारंपरिक माध्यम किस तरह आधुनिक डिजिटल स्पेस में अपनी पहुंच को मजबूत बनाता है।
तो दोस्तों, अनुभवों की यह डायरी अब अपने आखिरी पन्नों की ओर बढ़ रही है। मेरा यह 120 घंटे का ट्रेनिंग का सफर भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन इस दौरान जो प्रैक्टिकल ज्ञान, जो अनुशासन और जो अमूल्य यादें मुझे मिली हैं, वे भविष्य में मेरे पूरे जीवन में काम आएंगी। मैं इस बेहतरीन मौके के लिए भारत सरकार के माई भारत पोर्टल और आकाशवाणी अहमदाबाद के पूरे परिवार का, विशेषकर दीपशिका मैम और राजेश सर का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया और मुझे रेडियो की इस कला से परिचित कराया। प्रोग्राम के इस अंतिम मोड़ पर मैं अपने सभी युवा मित्रों और श्रोताओं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। आज का दौर सूचनाओं की बाढ़ का दौर है। हमारे मोबाइल पर हर सेकंड सैकड़ों खबरें और मैसेज आते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर सनसनीखेज और आधी अधूरी खबरें बहुत ही तेजी से फैलती हैं, जो समाज में भ्रम पैदा करती हैं। ऐसे माहौल में भी हमारा आकाशवाणी आज भी अपनी उसी पुरानी विश्वसनीयता और सच्चाई के साथ मजबूती से खड़ा है। यहाँ प्रसारित होने वाले समाचार बिना किसी मिर्च मसाले के, बिना किसी बनावटी ड्रामे या सनसनी के, बिल्कुल साफ साफ और सटीक रूप में आपके सामने रखे जाते हैं। इसलिए सच्ची जानकारियों से हमेशा जुड़े रहने के लिए आकाशवाणी के समाचारों को सुनने की आदत जरूर डालें। हमारा यह केंद्र आकाशवाणी अहमदाबाद आज के युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी पूरी तरह एक्टिव है। आप आकाशवाणी अहमदाबाद को इसके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल यानी फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन डिजिटल मंचों पर आपको रोजाना के प्रोग्राम्स और क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जानकारी तुरंत मिलती रहेगी। इसके साथ ही अगर आप अपने घर से दूर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास पुराना रेडियो सेट नहीं है, तब भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इस एक ऐप के जरिए आप दुनिया की किसी भी कोने में बैठकर किसी भी समय सीधे अपने मोबाइल फोन पर आकाशवाणी अहमदाबाद और युव वाणी के लाइव प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विशेष युववाणी कार्यक्रम में मेरे साथ पूरी यात्रा पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे यानी कीर्ति वैष्णव को दीजिए अनुमति। आप सुन रहे थे युवाओं का प्रिय कार्यक्रम युववाणी, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद बड़ौदा केंद्र से किया गया है। नमस्कार।

0: મિત્રો, હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા યુવા મિત્રો માટેનો કાર્યક્રમ યુવાણી, પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. સમય છે ગેરફિલ્મી ગીતનો.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં કરિશ્મા રાય. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए. एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षेण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं. साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं. उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की. हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए. गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा. इसी बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा.

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे आजना मुख्य समाचार। રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે સંરક્ષણ પદવી સન્માન સમારોહ દરમિયાન સશસ્ત્ર દળો અને સુરક્ષાકર્મીઓને વીરતા પુરસ્કારો એનાયત કરાયા। કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી જેપી નડ્ડાએ નવી દિલ્હીમાં સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્ર માટે શ્રેણીબદ્ધ ડિજિટલ પહેલનો શુભારંભ કર્યો। વડોદરાની GSFC યુનિવર્સિટી ખાતે આજથી મધ્ય ગુજરાતની 2 દિવસની વાયબ્રન્ટ ગુજરાત પ્રાદેશિક પરિષદનો પ્રારંભ થયો। વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનું નામ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધાયું। સુરતમાં માત્ર 11 દિવસમાં 350 એક્ઝિબિટર્સની ઓનબોર્ડ કરીને બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ। રાજ્યમાં સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન દ્વારા જળ સંગ્રહ શક્તિની ક્ષમતામાં આ વર્ષે 20,789 લાખ ઘન ફૂટનો વધારો નોંધાયો। ગાંધીધામ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા પર્યાવરણીય જવાબદારીના ભાગરૂપે ચેમ્બર ભવનના પ્રાંગણમાં 150 ફૂટ ઊંડો રેઇન વોટર રિચાર્જ બોર તૈયાર કરવામાં આવ્યો। થાન જાગીરમાં આગામી 15 અને 16 જુલાઈના રોજ અષાઢી બીજનો પાટોત્સવ તથા જીર્ણોદ્ધાર પામેલા ગંગેશ્વર અને રામેશ્વર મહાદેવ મંદિરનો મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાશે। ગાંધીધામમાં કંડલા વિશેષ આર્થિક ક્ષેત્ર કાશીસથી કંડલા પોર્ટના તિલક ગેટ સુધીના 8.45 કિલોમીટરના 4 માર્ગીય રસ્તાને 6 માર્ગીય બનાવાશે। ભુજ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ અને કોર્પોરેશન તંત્ર દ્વારા ગાંધીધામમાં સંયુક્ત કાર્યવાહી હાથ ધરીને વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થોના 17 નમૂના લેવામાં આવ્યા। જિલ્લા માહિતી કચેરી ભુજ અને આર્ટ ઓફ લિવિંગના સંયુક્ત ઉપક્રમે ભુજમાં પત્રકારો માટે 3 દિવસીય યોગ શિબિર યોજાઈ। મુખ્ય સમાચાર પૂરા થયા।

0: जबलपुर को इंडियाज नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हब बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वडोदरा को देश का सबसे बड़ा ब्लू इकोनॉमी हब बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
1: आभारी शर्मा, आज मध्य गुजरात माटे 7,092 करोड़ रूपियाना रोकाण करारो कराया, जेनाथी राज्य में 1,200 थी वधु नवी रोजगारीनी तक उभी थशे। मुख्य रोकाणों में जीएसएफसी द्वारा पेट्रोकेमिकल्सना विस्तरण माटे 4,475 करोड़ रूपया अने पॉलीकेब इंडिया द्वारा एंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माटे 2,000 करोड़ रूपियाना रोकाणनो समावेश थाय छे। आ उपरांत एमएसएमई क्षेत्रे डिजिटल विस्तार अने एआईने वेग आपवा माटे आईआईटी गांधीनगर अने आईबीएम इंडिया जेवी संस्थाओ साथे व्यूहात्मक भागीदारी करवामां आवी। गुजरात ने रोकाण विकास और रोजगार क्षेत्र वधु विश्वसनीय बनावा 8 नवी जीआईडीसी की जाहेरात करवामां आवी छे। वडोदरा में योजाई रहेली वायब्रंट गुजरात प्रादेशिक परिषद मध्य गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले जणाव्यू, खेड़ा, अमदावाद, पंचमहाल, छोटाउदेपुर और भावनगर जिला 3,611 एकर विस्तार में स्मार्ट औद्योगिक वसाहतों कार्यरत थशे, जेमा खेड़ा महिज, सरखेज, अंगाड़ी और महिसा, अमदावाद मांडल, पंचमहाल नदीसर, छोटाउदेपुर ऊंडवा तथा भावनगर मोणपुर खाते नवी जीआईडीसी बनशे। गुजरात विधानसभा खाते आज गुजरात और हरियाणा विधानसभा की अरजी समिति की संयुक्त बैठक योजाई। बैठक में बने राज्यों की समितिओ वच्चे लोकतांत्रिक परंपराओ, संसदीय कार्यप्रणाली और प्रजाना प्रश्नों पारदर्शक निवारण अंगे सकारात्मक चर्चा विचारणा और अनुभवों आदान प्रदान करायु। विधानसभा उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी जणाव्यु हतु कि आ समिति जनता अवाज ने सीधोज विधानसभा सुधी पहोंचाड़वानू और नागरिकों की समस्याओ तेमज फरियादो सांभळी तेना निवारण माटे नक्कर पगला उठावानू सशक्त माध्यम छे। विविध राज्यों में 15 करोड़ रूपयाथी वधुनी साइबर छेतरपिंडी मामले राजकोटना 4 सहित कुल 5 आरोपी झड़पाया छे। साइबर सेंटर ऑफ एक्सलेंस की तपास में आरोपी फॉरेक्स ट्रेडिंग में नफो कमावानी लालच आपी रोकाण करावी छेतरपिंडी करता होवानु सामे आव्यु छे। आ समग्र नेटवर्क नेपाळना काठमांडूथी चलावता होवानु साइबर सेंटर ऑफ एक्सलेंसना पोलिस अधीक्षक राजदीपसिंह झालाए जणाव्यु।
2: आजरोज साइबर सेंटर ऑफ एक्सलेंस ने टीम द्वारा कुल 5 आरोपियों की धरपकड़ करवामां आवेली छे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में रोकाण करवानी लालचो आपी तेमनी पासेथी आश्रे 2,30,00,000 जेटली रकम पड़ावी लेवामां आवेली हती। अने आ समग्र नेटवर्क नेपाळ काठमांडू खाते थी चलावामां आवतुं हतुं। भारतना 31 जेटला गुनाओनो हाल प्राथमिक तबक्के भेद उकेलायेल छे, जेमां आश्रे 15 करोड़ जेवी रकम आ लोकोए मेळवी लीधेल हती।
1: अमदावाद में भगवान जगन्नाथजी की 149मी रथयात्रा पूर्व आज जड़यात्रा की अषाढ़ी बीज की उजवनी विविध धार्मिक उत्सवों प्रारंभ थयो छे। भगवान जगन्नाथजी मंदिर थी साबरमती नदी भूदरना आरा सुधी जय रणछोड़ना नाद साथ यात्रा की शुरूआत थी हती। साबरमती नदी भूदरना आरे गंगा पूजन कराया बाद संतो और महानुभावों द्वारा बोट मार्फते नदी वच्चे जई 108 पवित्र कलश में जल भरवामां आव्यु। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्रनो षोड़ोपचार पूजाविधि साथ जलाभिषेक करवामां आव्यो हतो। गुजरात भाजप प्रदेश प्रमुख जगदीश विश्वकर्मा और पूर्व नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेले भगवान जलाभिषेक कर्यो हतो। पाटणना आनंद सरोवर नजीक आवेला गणेश आश्रम खाते थी भव्य जड़यात्रा निकली और शहरना विविध मार्गो पर फरीने जगदीश मंदिर पहुंची हती। सूरत जिल्लानी शाळाओं माटे चोमासा पूर्वे जिला शिक्षण अधिकारी द्वारा कड़क मार्गदर्शिका जाहिर करवामां आवी छे। तेमना जणाव्या मुजब शाळाओंमां आवेला जर्जरित वर्गखंडो के भयजनक भागोने तोड़ी पाड़वामां आवे। भारे वरसादनी स्थितिमां ज्यां सुधी दरेक विद्यार्थी सुरक्षित घरे न पहोंचे त्यां सुधी दरेक शिक्षकोए शाळामां ज हाजर रहेवुं पड़शे। आ उपरांत नियमित सफाई अने गटर लाइनी चकासणी तेमज शाळा परिसरमां जोखमी वृक्षो दूर करवा अने वीजळीना खुल्ला वायरोनुं समारकाम करावा जिला शिक्षण अधिकारी भगीरथसिंह परमारे जणाव्युं।
3: શાળાની અંદર કોઈ પણ ભાગ જર્જરિત હોય તો તેનાથી વિદ્યાર્થીઓને દૂર રાખવાનું, તેને કોર્ડન કરવાનું, આ ઉપરાંત કોઈ પણ વૃક્ષો છે તો તેની ડાળીઓ નમેલી હોય તો તેને કપાવવા માટેની પણ કાર્યવાહી કરવા માટેનું જણાવવામાં આવ્યું છે। ઇલેક્ટ્રિકનું વાયરિંગ જે છે જેથી કરીને કોઈ પણ શોર્ટ સર્કિટ ન થાય અથવા તો એમસીબી સ્વિચની પણ એ બાબતની ચોકસાઈપૂર્વક ચકાસણી કરી લેવી જેથી કરીને કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓને ઇલેક્ટ્રિક બાબતે પણ કોઈ તકલીફ ન પડે। જો વધુ વરસાદ પડે એવા સંજોગોમાં આચાર્યશ્રી દ્વારા શાળા કક્ષાએ વિદ્યાર્થીઓને રજા જાહેર કરવા માટેની પણ સત્તા આપવામાં આવી છે।
1: આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી સાંભળી રહ્યા છો। આ સમાચારનું જીવંત પ્રસારણ આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એઆઈઆર ન્યૂઝ ગુજરાત પર પણ સાંભળી શકશો। વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ newsonair.gov.in/gu અને મારા એક્સ હેન્ડલ AIRNews_ABD ને ફોલો કરશો। રાષ્ટ્રીય રસીકરણ અભિયાન અંતર્ગત આજે રાજકોટ શહેરમાં 196,200 જેટલા 5 વર્ષ સુધીના બાળકોને પોલિયો રસી પીવડાવવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં રસીકરણના પ્રથમ દિવસે 148,000, જ્યારે બોટાદ જિલ્લામાં 89,034 બાળકોના લક્ષ્યાંક સામે

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत।

श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं महावीर सिंघल की लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक आनंद किशोर माथुर।

0: हे राम, कितनी भीड़ है आजकल बाजार में। एक के बाद एक आदमी, महीनों तक चले जाओ दुकान ही दुकान, और हर एक दुकान के अंदर 8-10 ग्राहक, और फिर कहीं कहीं तो क्यों में खड़े रहो।
1: अजी तो आप खड़े ही रहे क्यों में, या कुछ काम भी करके आए हैं? अरे ये क्या, ये दोनों थैले तो खाली हैं।
0: अरे ठहरो भाई ठहरो, मैं देता हूँ सामान। ये पड़ा, ये रहा साबुन तेल, और ये रहा मूंग की दाल, मूंग पापड़ मिर्ची, और ये सब्जियाँ भिंडी टमाटर।
1: उड़द की दाल लाए? इमली भी नहीं?
0: इमली?
1: फिर क्या खाक लाए हो? 5 साल हो गए शादी को, अभी तक बाजार से घर गृहस्थी का सामान लाने का भी होश नहीं है।
0: अरे तो तुम चलती ना मेरे

0: साथ
1: मुझे मरने की फुर्सत हो तब ना। हर महीने समझा समझा कर भेजती हूँ कि बाजार से ये सामान लाना है वो लाना है, पर
0: अरे पर क्या, गलती तुम्हारी है। मैंने हजार बार कहा कि जो भी काम मुझसे कराना हो उसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिया करो, एक पर्ची पर लिख देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता।
1: मैं कोई नया सामान तो मंगा नहीं रही हूँ, वही रोजाना का सामान है। गलती खुद करते हो और दोष मुझे देते हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी बाजार जाओ अपनी पुरानी पढ़ाई दोहरा लिया करो।
0: पढ़ाई
1: और क्या, सीधी सी बात है, आ से अरबी, आ से आलू, ई से इमली, ऊ से उड़द की दाल,
2: के से ककड़ी, ख से खरबूजा, गे से गधा, नहीं नहीं, ग से गोभी, च से चमचा, चूना, वाह
0: क्या खूब याद आया है, चमचा, छ से खैर जाने दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसे जलेबी, जैसे जगमोहन, जगमोहन।
3: बंदा हाजिर है।
4: कहिए हुजूर, इस नाचीज को कैसे याद किया?
0: जगमोहन, आओ भाई, बड़े मौके से आए हो। हाँ
4: हम तो परोपकारी जीव है प्यारे, कहो किस कष्ट में हो। अभी सारी पीड़ा से पिंड ना छुड़ा दूं तो मेरा नाम जगमोहन नहीं।
0: अरे बात यह है कि तुम्हारी भाभी मुझे नए सिरे से पाठ पढ़ा रही है।
4: अच्छा तो इसमें नई बात कौन सी हुई भाई?
1: देखो भैया, दरअसल बात यह है, तुम्हारे दोस्त अपनी आदत से मजबूर हैं। बाजार जाते हैं सामान लेने तो कुछ सामान ले आते हैं और कुछ नदारद कहते हैं कि भूल गया। फिर मैं इन्हें याद रखने की कोई तरकीब बताती हूँ तो तुम ही बताओ क्या गुनाह करती हूँ?
0: अरे गुनाह तो मैं करता हूँ जो तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। अच्छा अब तुम ही बताओ यार, अगर मैं कहता हूँ कि मुझसे जो भी सामान मंगवाना हो उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया करो, तो इसमें क्या गलती करता हूँ मैं?
4: भाभी वैसे बात तो ठीक कहता है मेरा दोस्त।
0: तुमसे ऐसी उम्मीद थी भाई जग्गू।
1: ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी, ये भी हो जाएगा।
0: अरे तो हाथ कंगन को आरसी क्या? इस हाथ लिस्ट और उस हाथ सामान,
1: तो मैंने ही कौन सी कच्ची गोलियां खेली हैं। मैंने पहले ही ब्लैक एंड व्हाइट में लिख रखा है सारा सामान, अभी लिस्ट लाती हूँ।
0: अरे मारे गए यार।
4: अरे मारे क्यों गए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अभी बाजार चलते हैं।
0: अरे मगर तुम इतनी दूर से आए हो, कुछ देर बैठते तो सही।
4: बैठेंगे बैठेंगे, देखो सुनो, यहाँ से चलते हैं, पहले रेस्टोरेंट में जाकर बैठेंगे, कुछ इधर की बात होगी, कुछ उधर की होगी, और फिर काम की बात होगी।
1: ये दो थैले हैं और ये रुपए, और ये लो सामान की लिस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में।
4: बहुत अच्छा भाभी, बस हम ये गए और ये आए। उठो राकेश।
0: चलो प्यारे।

0: अच्छा जग्गू अच्छा, अब बता इन दिनों कैसा चल रहा है?
1: हाँ ठीक ठाक है, बस वो तुम्हारी भाभी की तबीयत जरा नरम चल रही है।
0: कैसे?
1: अरे बात ये हुई यार कि पिछले दिनों मेरी साली की शादी थी, हमें जोधपुर जाना पड़ा। अब गाड़ी में आजकल कितनी भीड़ भाड़ होती है कि पूछो ही मत।
0: हाँ यार भाई, पता नहीं आखिर इसका हश्र होगा क्या।
1: और फिर शादी में खाने पीने का मामला जरा अब अपना ढीला ही रहता है यार।
0: अरे भाई किसको परवाह रहती है, लेकिन यार ससुराल की शादी की बात थी, तूने माल जरूर मारा होगा। हाँ।
1: अरे क्या खाक माल मारा होगा, सारा एटमोस्फेयर ही चेंज हो गया।
0: अच्छा हाँ। अच्छा हुआ भाई, आजकल चेंज की वैसे भी शॉर्टेज है।
1: यार तुझे हर वक्त मजाक सूझता रहता है।
0: अच्छा अच्छा अब बता ऐसी क्या बात हो गई थी, क्या किसी से झगड़ा हो गया?
1: अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन यार पैसे का पैसा गया और बुद्धू के बुद्धू बने।
0: अरे सो तेरे लिए कौन सी नई बात है।
1: फिर वही बात।
0: अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बता क्या हुआ?
1: होता क्या, वही ढाक के तीन पात, वही फिल्मी स्टोरी।
0: लड़के का बाप कोई फिल्मी प्रोड्यूसर होगा है?
1: अरे फिल्मी नहीं, जुल्मी कहो जुल्मी। हीरो पर बैठने से पहले उसने एक परवाना ससुर साहब के हाथ में पकड़ा दिया।
0: क्या कहा, परवाना पकड़ा दिया? सुनते हैं परवाने तो मंडराया करते हैं, क्या उसने किसी परवाने को पकड़कर आपके ससुर साहब को इनायत कर दिया?
2: कैसे दो दिन के बच्चे बन रहे हो।
1: अरे परवाने से मेरा मतलब है स्लिप, कागज की स्लिप, और उसमें ये लिखा कि अगर 2 लाख रुपए उन्हें नकद इसी वक्त नहीं दिए तो वो बारात वापस ले जाएंगे।
0: क्या राइटिंग में, मेरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया?
1: हाँ जनाब ब्लैक एंड व्हाइट में दिया। हमारा तो सारा मूड ही बिगड़ गया,

0: सोचा था कि जोधपुर घूमेंगे, कुछ दिन ससुराल में रहेंगे, सारे पैसे तो वहाँ भेड़ चढ़ा दिए और यहाँ आकर छुट्टी और कैंसिल करानी पड़ी।
1: हो भाई जग्गू, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है कि तेरा दिल टूट गया, लेकिन प्यारे अब ये कॉफी का दिल भी ठंडा हो रहा है, इसे मत तोड़। हाँ ले ले कॉफी ऑफी भी। अरे सुना तूने, वो वर्मा ने शादी कर ली।
0: अच्छा, तो इसमें गुनाह क्या हो गया भैया, हर लड़का शादी करता है।
1: अरे मगर ब्लैक एंड व्हाइट में शादी की है।
0: क्या मतलब?
1: अरे मतलब वही कि अग्नि को साक्षी मानकर नहीं, वर्मा ने सिविल मैरिज की है।
0: यानी कि राकेश अब हर बात लिखित में होने लगी, जैसे एक दूसरे को एक दूसरे की जवान में विश्वास ही नहीं रहा। कैसा समय आ गया है जबकि आदमी की जवान की साख की कोई कीमत ही नहीं रही।
1: और एक वो जमाना था जब जवान से बेटी बेटी तक पराया हो जाया करते थे।
0: प्यारे समय ही ऐसा है, ब्लैक माने काला और व्हाइट माने सफेद, यानी काली रात और सफेद दिन। ये रात और दिन का ही तो चक्कर है जो हम सबको चक्कर दे रहा है
1: और हम इसकी चक्की में पिस रहे हैं। भाई कबीर ने ठीक ही कहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए और दो बाटन के बीच में साबुत बजाने को। अरे अरे पर तू उठ कैसे गया भाई, हाँ क्या देर हो रही है?
0: हाँ भैया एक जगह जाना है। अब सुन यार, अब वो बात यह है कि 50 रुपए हो तो दे देना, कुछ काम है। अब काम नहीं बना तो वापिस कर दूंगा।
1: अरे 50 तो नहीं है, पर तू ऐसा कर इसमें से 40 रुपए ले ले।
0: ला ला 40 दे दे। कोई बात नहीं, अभी 40 चलेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।

0: रुपए लेकर चलता बना। अब मैं जरा वो लिस्ट निकालूं। यहाँ भी नहीं है, इस जेब में देखूं, यहाँ भी नहीं है, शायद घर पे रह गई होगी। पहले घर चलता हूँ, शीला क्या कहेगी, फिर सामान कैसे लोगा। हाँ याद आया, पढ़ाई दोहरा लूंगा। आ से अरबी, आ से आलू, ठीक है एक एक किलो ये दोनों ले लूंगा। अरे भैया अरबी देना और आलू देना।
1: खिलौने वाला, खिलौने वाला, खिलौने ले लो बाबूजी, हर माल मिलेगा। ₹3, ₹3, ये इंजन काला ₹3, ये गुड्डा ₹3, ये खरगोश ₹3, ले लो बाबूजी ₹3। और लुटा दिया माल, लुटा दिया माल।
0: अब बाबूजी कहिए क्या दू। ₹3, इंजन काला ₹3, ई से इंजन और ग से गुड्डा, ख से खरगोश। ठीक है ठीक है, ये तीनों ले दो। अरे भैया ये इंजन, गुड्डा और खरगोश, ये तीनों दे देना। ये ले, ये ये ये ले रुपए। हाँ ये ठीक किया। और हाँ हाँ हाँ, ये रसगुल्ले बहुत बढ़िया हैं। और ये सेब दोनों एक एक किलो ले लेता हूँ। र से रसगुल्ला, से सेब। अब बचे ₹2। ठीक है, हो गया बजट पूरा। शीला भी क्या याद रखेगी कि मैंने उसी के पढ़ाए हुए पाठ के हिसाब से सामान खरीदा है। अब घर चलता हूँ। ये लो सामान।
2: अरे बड़ी जल्दी आ गए, पर ये क्या, ये इंजन और ये खिलौने, ये सब तुम्हें लाने को किसने कहा था?
3: तुमने, मैं अपनी मर्जी से कोई सामान नहीं लाया हूँ। हाँ
2: क्या, ये इंजन, गुड्डा, ये घर गृहस्थी है या कोई नुमाइश? और ये मिठाई का पैकेट, ये सेब, ओफो, सारी तनख्वाह चाटने में ही फूंक दोगे क्या? मैं कहती हूँ आखिर तुम्हें समझ कब आएगी, ना अजवाइन लाए, ना नमक, ना हल्दी। जरा लाना तो वो लिस्ट, वो जो मैंने तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में दिया था।
0: वो यही कहीं होगी। पर प्रिय तुम अपनी पढ़ाई याद कर लो ना।
2: क्या खाक याद कर लूं, क्या जगमोहन ने भी याद नहीं दिलाया कुछ?
1: मैं अंदर रहता हूं प्यारे।
0: अरे आओ आओ और अपने दोस्त का जनाजा देखते जाओ। सुना था गए हुए वापस नहीं आते, पर अब तो वो भी वापस आने लगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बैठो बैठो यहाँ बैठो।
4: अरे बैठने नहीं आया राकेश, मैं तो कुछ देने आया हूँ।
0: अरे अरे तो रुपए ही दोगे ना?
4: रुपए, कौन से रुपए?
0: अरे वही जो तुमने मुझसे रेस्टोरेंट में लिए थे।
4: रेस्टोरेंट में? यार देख मजाक ठीक नहीं है।
0: देख मजाक तो तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी एक घंटे पहले रेस्टोरेंट में तूने मुझसे रुपए मांगे थे और मैंने दिए थे, और तूने कहा था कि काम चल जाएगा।
4: काम तो चल जाता प्यारे, मगर तुमने रुपए दिए कहाँ? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास?
0: क्या मतलब?
4: मतलब ये कि आपने जो मुझे रुपए दिए उसकी कोई रसीद है ब्लैक एंड व्हाइट में? खुद तो घर के सामान की लिस्ट तक ब्लैक एंड व्हाइट में मांगते हो, और पैसे लेने देने के बाद यूं ही फोकट में कर लेते हो। वाह क्या कमाल है
0: यार। एक तो तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, और ऊपर से मुझसे मजाक कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
2: आहा, अपनी याददाश्त तो ठीक नहीं, और दूसरों को कहते हो हर बात लिखित यानी ब्लैक एंड व्हाइट में लिया करो। मैंने घर के सामान की लिस्ट दी थी, वो भी न जाने कहां फेंक दी तुमने।
0: अरे तो मैं क्या करूं, मुझे याददाश्त भी तो भगवान ने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दी। अब रखो तुम घर का सामान और रखो तुम रुपए, मैं तो चला। हाँ
4: अरे अरे मेरे भाई ऐसे कहाँ चल गया, अब केवल रुपयों के लिए इतनी बेरुखी। ये लो अपने रुपए।
2: अरे ये तो सामान की लिस्ट है जो मैंने नहीं दी थी।
0: पर ये तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई जग्गू?
4: इसलिए कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिली, तुमने रेस्टोरेंट में रुपयों के साथ मुझे ये लिस्ट भी दे दी।
0: और तूने इसे ले लिया, और रुपयों का तूने क्या किया बच्चू?
4: उसका तो मैं ये सामान ले आया जो तुम लाना भूल गए। आखिर मैं करता क्या, ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो थी।

हवा महल में आज आप सुन रहे थे महावीर सिंघल की लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक थे आनंद किशोर माथुर। ये झलकी आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश हंसी तो फंसी फिल्म से, आवाजें चिन्मयी श्रीपदा और शेखर की, बोल अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत विशाल शेखर का।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अजब प्रेम की अजब कहानी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की आवाजों में। आशीष पंडित ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

हैप्पी न्यू ईयर। अभी आपने सुरमेश या घोषाल और अरिजीत सिंह को सुना। संगीत विशाल शेखर का था, बोल इरशाद कामिल के। चित्रलोक कार्यक्रम में लेते हैं अब एक छोटा सा अंतराल।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। वन नाइट स्टैंड, अब सुनिए इस फिल्म का गीत मीड रॉस और अरिजीत सिंह की आवाज में। वो लिखे हैं शब्बीर अहमद ने, संगीत मीड रॉस का।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।

0: राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से दो दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
8: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
7: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his three-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, "Over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity." Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
9: On the final day of his visit, Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park. In a social media post,

0: हमारी वैज्ञानिक खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रथम पीढ़ी है वो है मिट्टी परीक्षण। और उसी मिट्टी परीक्षण की चर्चा में हम बात करेंगे कि हमें मिट्टी का नमूना किस तरीके से लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें जिस खेत की मिट्टी का नमूना लेना है उस खेत की टोपोग्राफी के आधार पर हम उसका चयन करेंगे कि हमारी जो खेत है वो समतल है या उबड़ खाबड़ है। तो हम अगर खेत समतल है तो उसको एक इकाई मान के हम एक सैंपल लेंगे। अगर हमारा खेत उबड़ खाबड़ है या फिर ऊंच नीच है उस खेत में, उसका कलर अलग अलग है, तो हम उसका दो इकाइयों में सैंपल लेंगे। तो सर्वप्रथम हम जिस खेत से सैंपल लेना है उसको जिग-जैग तरीके से बांट लें। 8 से 10 जगह से हमें सैंपल लेना है। सैंपल लेते समय हमें यह सावधानी रखनी है कि हमें मेड़ के पास से सैंपल नहीं लेना है, पेड़ के नीचे से हमें सैंपल नहीं लेना है, और हमें उर्वरक डालने के पश्चात या इरिगेशन के पश्चात हमें मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है। इन सब बातों की हमें सावधानी रखनी है। तो मिट्टी का सैंपल लेने के लिए हमें सर्वप्रथम 15 सेंटीमीटर वी आकार का गड्ढा करना है। उस वी आकार के गड्ढे की मिट्टी को बाहर निकालना है। उसके पश्चात हम जो वी आकार का गड्ढा बना है उसके साइड से 2 से 3 सेंटीमीटर का कट बना के उस मिट्टी को हम साफ गमले में या फिर बाल्टी में रखेंगे। उस सैंपल को 8 से 10 जगह से लेने के पश्चात हमारे पास उदाहरण के तौर पर जैसे 4 केजी मिट्टी हो गई, तो हमें लेबोरेटरी में भेजने के लिए सिर्फ 0.5 केजी मिट्टी चाहिए। तो उस 0.5 केजी मिट्टी करने के लिए हमें वाटरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। उसको जो सैंपल हमें मिला है 8 से 10 जगह से, उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। उसके पश्चात आमने सामने के 2 भाग हम बाहर कर देंगे, फिर वापस उसी को मिक्स करेंगे। ऐसा करते हमें 0.5 केजी मिट्टी सैंपल के लिए लेनी है। लेबोरेटरी में सिर्फ 0.5 केजी मिट्टी हमें भेजनी है। और जो सैंपल हमने लिया है उसमें किसान का नाम, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, कौन सी फसल उसने पहले लगाई, कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं, ये सब डिटेल उसमें लेबोरेटरी में साथ में सैंपल के साथ में भेजनी है। सैंपल लेने के पश्चात हम उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं। तो लेबोरेटरी में हमें रिपोर्ट मिलती है। उस रिपोर्ट में हमें पीएच, विद्युत चालकता जिसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी पोषक तत्व तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व की जानकारी हमें उस रिपोर्ट के आधार पर मिलती है। उस रिपोर्ट के अनुसार ही हम अनुशंसा करते हैं कि आपकी फसल को कितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, कितनी मात्रा में आपको फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है और आपकी फसल के लिए क्या रिकमेंडेशन है। उसी हिसाब से हम रिपोर्ट के आधार पर अनुशंसित करते हैं कि आपको कितना फर्टिलाइजर देना है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि प्रत्येक साल अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाइए, जिसे पता चले हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित है, हमारी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, हमारी मिट्टी का पीएच कितना है। क्योंकि जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो हमारी मिट्टी की पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन पर डिपेंडेंट रहती है। तो सभी भाइयों, किसान भाइयों से निवेदन है कि अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और उस परीक्षण के आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमें पोषक तत्व उर्वरकों का प्रबंधन करना आवश्यक है।
1: श्रोता मित्रों, हवे वितेला सप्ताहना कच्छना अन्य महत्वना समाचारों पर एक नजर करिए। प्रस्तुत करी रह्या छे कल्पना शाह।
2: जिल्लाना मेन्युफेक्चरिंग उद्योगोने स्मार्ट टेक्नोलॉजी साथे जोड़वा फोकिया अने केंद्र सरकारना नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा सूक्ष्म, लघु अने मध्यम उद्योगोना विकास प्रोजेक्ट अंतर्गत भूज अने गांधीधाममां रोड शो नुं आयोजन करायुं। समग्र देशनी साथे जिल्लामां पण मोहर्रम पर्व निमित्ते विविध स्थळे शहादतनी यादमां ताजियाना जुलूस काढवामां आव्या। रेलवे द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना हेठळ जिल्लाना रेलवे स्टेशनોને આધુનિક બનાવવાની કામગીરી તેજ બનાવાઈ। સામખિયાળીનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ ભુજ અને ભચાઉના રેલવે સ્ટેશનનું નવીનીકરણ પ્રગતિમાં। ભુજ તાલુકાના હબાય ગામે આવેલા ઐતિહાસિક માં વાઘેશ્વરી માતાજીના મંદિરે ભીમ 11 ના પાવનદિને વર્ષો જૂની પરંપરા અનુસાર કુંડ સફાઈ તેમજ વિશેષ પૂજન વિધિનું આયોજન કરાયું। શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આરટીઈ હેઠળ પ્રવેશ માટેનો 4થો રાઉન્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યો। 55 બાળકને પ્રવેશની જાણ મેસેજ દ્વારા કરવામાં આવી। અબડાસા તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે ઇન્ચાર્જ તાલુકા વિકાસ અધિકારી જિજ્ઞેશ પરમારના અધ્યક્ષસ્થાને અબડાસા તાલુકા પંચાયતની પ્રથમ સામાન્ય સભા યોજાઈ। કચ્છને દેશના વિવિધ શહેરો સાથે જોડતી વિમાની સેવા શરૂ. જામનગર એનસીસી ગ્રુપ હેડક્વાર્ટર હેઠળ આવતા જામનગર, પોરબંદર, ભુજ, વેરાવળ, ગાંધીધામના યુનિટ અને બટાલિયનના કુલ 42 આર્મી અને નેવી કેડેટ્સ અગ્નિવીર તરીકે રાષ્ટ્રની સેવામાં જોડાયા. નખત્રાણા તાલુકામાં ફૂડ સેફટી વિભાગની ટીમ દ્વારા ખાણીપીણીના

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ. जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था. बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं. क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं. फिर अब जो मैं आवाजें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था. मतलब वॉइस में आवाज मेरी लड़की जैसी थी. तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है. लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लासिक. तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा. लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है. और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ. फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं. और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जैसे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं, एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे. और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेमनगर का. तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे. उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ. उसके बाद मैंने जैसे प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए. तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा.
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी.

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक पर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पर जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनकरेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा।

से, तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार

जिधर देखें उधर मस्तियां हैं, शोखियां हैं तेरी निगाहों के ए सनम, जरा घबरा के जरा शर्मा के लूटते जाना, जलवे हैं तेरी निगाहों के ए सनम।

धधक रहा है सीने में मोहब्बत का अंगारा, कोई क्या जाने कैसे बनेगा सहारा, ये बादल आवारा इसे कौन पहचाने।

ये रुत, ये नजारे, ये मस्त निगाहें भूलना नहीं है, ये पहली मुलाकात, ये प्यार भरी बातें जीने के सहारे, इन्हें भूलना नहीं है।

0: यम्मा प्यार क्यों न होगा ये अदाएं उफ यम्मा
1: ये मौसम

तूफान उठाएगा ये जमाना, उठाने दो, दिल तो दौड़ता ही जाएगा अपनी मंजिल की ओर। नजरें मिली हैं तो सपनों की महफिल में शमा जलती ही रहेगी, दो दिल बढ़ते ही जाएंगे अपनी मंजिल की ओर।

सितारों का झिलमिलाना, चिरागों का जलना दे रहा है इशारा, तुझे रोके तो कैसे। दिल पहले भी कब भरा था, आज भी प्यासा है, ये आजमाइश होती ही रहेगी। ऐ सनम तुझे रोके तो कैसे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित